0: काफी तरह का फूड एंड दे हैव द एग्जीबिशन जैसे हम आप मेंशन कर रहे हो एंड देन यू एक्चुअली लर्न अ लॉट और काफी आपका जो अप्रिसिएशन ग्रो होता है आप क्यूरियस तो होते हैं बट एक्चुअली यू एक्चुअली लर्न अ लॉट हितेश आई एम गेसिंग यू आर नॉट फ्रॉम बंगाल
1: मैं बंगाल से नहीं हूँ सर पर मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप इन स्कूल फ्रॉम बंगाल एंड आई बीन टू कैलकटा मेनी टाइम्स एंड लव इट लव द वाइब मेरा जो एक्सपीरियंस था मैं आप अगर आप इफ यू हैव इफ यू अलाउ मी टू शेयर आई यूज्ड टू प्ले फॉर स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया बास्केटबॉल टीम अ लॉन्ग टाइम अगो एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग आई हैव सीन इन कैलकटा अराउंड सॉल्ट लेक स्टेडियम एंड यू माइट बी एबल टू क्वालिफाई दिस देयर आर लॉट ऑफ फूड वेंडर्स स्ट्रीट फूड And we were there, and I saw like a really big, the largest bull I've ever seen in my life. It used to go to every stall, and every vendor, by their own conscience, offered anything they could offer that bull. And if the vendor was busy, he would just patiently wait. And I'm talking about a street full of people. It was like, you know how Calcutta is like. It's people, people, and people. And people were very... supportive of this and they respected the bull space he will eat at every stall and then disappear I don't know where and this used to happen every day I was there for like 5 days and I saw this happening every day so that was very fascinating for me so I got a lot of really good memories I wish I was able

0: By the time we know it, the year is over.
1: Yeah.
0: और उसके बाद फिर होली का टाइम आ जाएगा तो आपको फिर होली में आना पड़ेगा.
1: Yeah. और वही होता है and we see the same people bump into each other and हम इसी तरह celebrate करते रहते हैं and then we just learn about the other culture and there is a video about Christchurch. So Arpan ji, I know you are pretty excited इस साल को भी लेकर and you are all kind of prepared for everything. और every time हम जब भी आते हैं तब हम जो माता जी की जो मूर्ति देखते हैं तो इस बार उसके विषय में आप कुछ बताएंगे?
2: So this is a new idol which we got last year. And I think that this is, we got it from the place where those murtis are made for most people. And it was done by one of the top artists. We are really proud and honored to have that. And we have a very senior member of the community who keeps the murti in her place very well, because storage is a big issue and you need space for keeping such stuff. So she has been very supportive. She's one of the senior most members of the community and she has been with the Durga Puja even before it became a community puja, actually. So she has been more than, she was part of the community, part of this puja when it was used to happen in somebody's house in their garage. So she has seen the entire journey. So, and the murti has changed. Prior, 2 years ago, we had a different murti. It was an old one, which was actually given to us from Wellington, from where I was actually. When I came to this country, I had seen that murti in Wellington. Then it moved to Christchurch, and now we have a new murti, and we are really excited about this murti, and we... And with the blessings, I think it will keep going well, I hope.
1: जी हाँ बिल्कुल माता जी की जब ब्लेसिंग रहेगी और तब तो सभी कुछ मुमकिन होता है. आई नो आई मीन जो लोग बंगाल के हैं दे एक्चुअली वेट करते हैं इस पूजा के लिए बहुत. वहाँ पे तो डिफरेंट तरह की जो परिश्रम और वहाँ का एटमोसफियर सब कुछ अलग होता है. जैसे अगर हम फिजी की बात करें जब दिवाली होती है क्रिसमस होती है जो कुछ हमारा होता है देन वी नो एक महीना दो महीना से सब शुरू हो जाता है एंड एवरीबॉडी स्टार्ट्स क्लीनिंग एंड देन वी सी ऑल द सेल साइंस गोइंग अप एंड यू नो सब शॉप्स उसी पे टारगेट करते हैं. रेडियो इज प्लेज अ बिग रोल ओवर देयर बिकॉज रेडियो में बार बार आप उसी तरह का जो धुन सॉन्ग्स एंड वो सब चीज बजना शुरू हो जाता है. यहाँ पे शायद वही कुछ तरह लेक होता है बट एट द सेम टाइम नाउ हम सोशल मीडिया पे जब देखते हैं सो मेनी थिंग्स हैपनिंग एंड जितने लोग भी जो टिकटॉक बनाते हैं सो दे माइट वांट टू कम टू द पूजा एंड बिकॉज दे सो मच टू कैप्चर. शायद वो लोग भी करना चाहेंगे आकर जो वीडियो करना चाहेंगे एंड देन दे विल बी ट्रेन राइड्स और वगैरह वगैरह बहुत कुछ है. सो शुभ एनीथिंग फॉर देम
3: देयर विल बी लॉट्स ऑफ आइटम्स इफ यू वांट टू मेक आई गेस इफ यू वांट टू मेक रील्स और इफ यू वांट टू मेक videos on. There will be the traditional part, so the puja itself would be something to look at. Like Arpanda said, there's a heritage stall where there will be lots of things that's related to Bengal as well as related to folklores as well as our culture back in the days, not even what we are doing as Kolkata now. And like what we are trying to do is, like what Arpanda said, getting a slice of Kolkata in Christchurch. So if you have not been able to go to Kolkata for a long time, you should feel nostalgic seeing a few things which you would instantly connect that this is Kolkata. So there will be ample things to do. And obviously, there's lots of cultural programs to look at, as well as the train ride, the magic show.
1: Yeah, and my understanding is that this is a family alcohol-free event.
3: Exactly. So yeah. It's a family event. Everybody is welcome. And yes, there's no alcohol. This is, in our pujas, it's always, there's only one or two pujas where it's a puja dedication thing. But otherwise, it is always an alcohol-free event. And we'll
1: call
3: request everyone that they maintain and respect that.
1: So आपके जो लोग रहेंगे कमिटी में दे विल बी मूविंग अराउंड इन
3: यस वील ऑब्वियसली लाइक आई सेड वील हैव वॉलंटियर्स एंड मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी इन ऑल प्लेसेस एंड ऑल फ्लोर्स एंड ऑब्वियसली इफ वी आर नॉट होपिंग दिस टू हैपन बट इफ समथिंग दैट इज अनटूवर्ड वी वुड प्रोबब्ली जेंटली रिमाइंड दोज इंडिविजुअल्स टू आइदर वेकेट द प्रीमिसेस और मेकिंग श्योर दैट एवरीबॉडी अराउंड देम इज नॉट फीलिंग अनकंफर्टेबल और ऑकवर्ड.
1: Thank you so much. And there was a Shubha. So be careful of this guy over here because he was health and safety. So, if you want to know, if you have rules, then do approach him. Or then there will be other volunteers, jo committee members, or then the event ki jo log rahenge, go and approach them and talk to them so that you know what the rules are. Especially if you are train ride, where there are a lot of people, especially kids, so you have to be really careful. And one thing, as Shubha said, we will want want to encourage on KDC, aapko thoda KDC show karna padega.

0: new people coming in, और हमें नहीं पता चलता कि उस crowd में कौन बंदा में क्या talent है, क्या कुछ कर सकता है. So I think if you are listening, if you are one of those people passionate about Durga Puja, या आपके पास कुछ हुनर है, आप अपना योगदान देना चाहते हो, then what you should do is step out and talk to this gentleman over here, and who knows, you might be the person they're looking for. तो ये भी हो सकता है, तो be mindful of that. और हम समय पे भी नजर दौड़ाते हैं. I think we've got a song to play as well, so we will just go quickly around and then we'll allow some time for a song as well. So Arpan ji, jate jate hamara jo audience hai jo sun rahe aapko dekh rahe hain Durga Puja ke vishay mein jo aap unko invite karna chahoge.
1: Definitely we will ask everyone to come and join us to celebrate this annual event, which is full of fun, unlimited fun. It will give you a taste of Bengal, and you will definitely love every moment of it. There are so many events in the mega event itself that will be engaging for people of all ages, and definitely great food and a great environment. So I would request and invite everyone who has the time to come over to Multicultural Center on 17th of October, Saturday, from 9 a.m. onwards. We are going to start our celebrations and join us in the festivities. Definitely, yeah. We'll like to see you there.
0: थैंक यू सो मच अर्पण मुखर्जी. तो जैसे आपने सुना है, आपको आना है जो रिक्रेशन जो हेगली एवेन्यू, मैं 455 हेगली एवेन्यू बोल दूंगा, जस्ट टू बी इजी, एंड देन यू कैन गो ओवर देयर एंड हैव अ गुड फन टाइम ऑन 17th ऑफ अक्टूबर. चलो हम बढ़ते हैं शुभ की ओर. ही इज़ द हेल्थ एंड सेफ्टी गाय. वैसे तो लोग जो साड़ी वगैरह जो अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आने वाले हैं, एंड दे माइट बी वेयरिंग हाई हील्स एज वेल, आई एम श्योर. शुभ आपको रोकने वाला नहीं है, बट बी केयरफुल, माइंड द स्टेप्स. शुभ जी, आप